बसे गोपाल गुर मिल आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन दियो मरार प्रभाते महला पंजवा प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा नाम तेरा जन के भंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यारा तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छाई राम जो जन राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन में हैराने सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जाके हृदय बसिया प्रभ सोए सोई निश्चल आवे न जाए अंधे न प्रभ के हर गुण गाए ताको करो सगल नमस्कार जाके मन पूर्ण कार कर कृपा मोहि ठाकर देवा नानक उदरे जन की सेवा प्रभाती महला पंजवा गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत जाके सिमरन कलमल जाए तिस गुर के हम चरनी पाए मत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निसतारे राहो जिन गुर के आ मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गिदा तिस गुर के सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइये बुरत प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया हलत पलत जिन गुरे सवारिया तिस गुर उपर सदा हूँ बारिया महा मुक्त के की आज्ञानी गुर पूरे की कथ कहानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव बड़े भाग पाइये हर सेव प्रभाती महला पंजवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपन नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मटाया हम बारक सरन प्रभ दयाल अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुर गोपाल रहाउ ताप पाप बिन से किन पीतर पहे कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म राधी अपने सतगुर के बल जाई अगमे गोचर बेअंत स्वामी ता कांत न पाइये लाहा खाट हुए तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पैर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कौ नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवान सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगे सुबा बंते सेवक सेव सदा सहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दुख सब विनसे ज्ञान अंधेरा मनते जाई राम जन मरन दुर गुर राखे मीत हर के नाम से लागे प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सो पल हो सान तिस गुर को हूँ सद बल जाए जिस प्रसाद हर नाम ते आए ऐसा गुर पाइये बडभागे जिस मिते राम लिव लागे कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटाके अंतर जामी आठ पैर अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की सरनाए प्रभाती महला पंजवान कर कृपा अपने प्रभ किए हर का नाम जपन को दिए आठ पैर गुण गाए गोविंद पै बिन से उतरी सब चेंदा उभरे सतगुर चरनी लाग जो गुर कहे सोई पल मीठा मन की मत त्याग राम मन तन बसिया हर प्रभ सोई कल कलेस किछ बिघन न होई सदा सदा प्रभ जी के संग उतरी महल नाम के रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिन से काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर सिंह मन माना सुन सज्जन संत मीत सहेले नाम रतन हर अगहे तोले सदा सदा प्रभ गुण निध गाइये कौ नानक बड भागी पाइये प्रभाती महला पंजवा से तनवंत से सच सा हर के दरगे नाम बिसा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाइये बड भागे निर्मल पूरन रीत राम पाया लाभ बजी बधाए संत प्रसाद हर के गुण गाए सबल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी अरंगमान बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरे पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताके कला गुर का शब्द सदा सद टला गुर की वाणी जिस मन बसे दुख दर्द सब ताका नसे हर रंग राता मन राम गुण गावे मुक्तो साधु तूरी नावे रहाउ गुर प्रसादी उतरे पार पाव परम बिनसे बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपय साध परे हर सरना आनंद सहज रस सुख कनेरे दुश्मन दुख न आवे नेरे गुर पूरे अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिक सब लाथे
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿੱਖ ਭਏ ਸਹੇਲੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਹਿਲਾ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲੈ ਮੇਲੇ, ਜਨ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਹਾ ਕਾਟਿਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੜ

पवित्र पावन से जन निर्मल हर के नाम समाये। हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सुभार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार। हर मंदिर में मन लोट है मोया दूजे पाए पारस पीटिए कंचन पिया कीमत कही न जाए। हर मंदिर में हर बसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जगरण करे हुमे मैल उतार सदा जागे करे अपना राखे पंच तस्कर काढे मारा। मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाइये मन से कर्म कमाए। राव गुरमुख सहज तुन उपजे दुख उमे बिचों जाए हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए। गुरमती मुख सोने हर रखिया उर तार एथे उथे सुख कना जप हर हर उतार।

प्रभ हस बोले कि ये ने आए सगल दूत मेरी सेवा लाए तू ठाकरे हुगरे सब तेरा कौ नानक गुर किया नवेरा प्रभाती महला पंजवान मन में क्रोध महंकारा पूज करे बहुत विस्तारा करे स्नान तन चक्र बनाए अंतर के मल कभी न जाए इस संजम प्रभ के नी न पाया भगौती मुद्रा मन मोह माया राहो पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाये कहे बस उतरे कहे सब उतरे बाहर कमावे हुए निशंक जम पर बात करे कलंक कुंगर वाज बितावे ताला अंतर कपट फिरे बेताला बरबी मारी सप न मुआ प्रभ सब किश जाने जिंतु किया पुअर ताप गेरी ते बस्तरा आपदा का मारिया ग्रह ते नसदा देश चूड पर दिशे ताया पंच चंडार नाले ले आया कान पर आए हराए टुका कर कर मांगे त्रितावन ते चुका बिंता छा छूड बद नदर पर नारी बेसन पाइये मह दुखियारी बोले नाई होए बैठा मोनी अंतर कल्प बवाइये जोनी अंते रहता दुख दे ही सहता हुक्म न बुझे ब्यापे ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल बेद स्मृत मनमुख कर्म करे अजाए ज्यों बालू कर ठौर न ठाए जसनू पहे गोविंद दयाला गुर का भजन नित तिन बाध्य पाला कोट मधे कोई संत दिखाया नानक तिन के संग तराया जे होवे भागतां दर्शन पाइए आप तरे सब कटंब तरे।

तन चंदन मस्तक पातीर अंतर पादर काती ठाग दिष्ट बगल बिलागा देख व्यसन प्राण भूख भागा कल भागवत बंद जराम गुरु दिष्ट रस्ता निष्बाद रहा नित प्रत सनात श्री रंग दो धोती कर मुँह मुखी रंग हृदय सूर्य संध्यानी हर दम हिर की बाणी सरपुरश चक्र सिंह गणेश सिंह निष्बाद जाग सिंह भगत परवे सिंह पग नाच चेत अकर्म ए लंपट नाच अतर्म मृग आसन तुलसी माला कर उज तिलक पाला हृदय कूल कंठ रुद्रा कर लंपट किस भाषण जय आत्म तत् नचीन सफुट तर्म बीन कौन बेणी गौर मुक्त आवै बिन सतगुर बाट न पावै एक ओंकार सतनाम करता प्रसन्न पौन और वह अकाल मूर्त अजूनी सवंग प्रसाद राग जय जावति माला नो राम सिमर राम सिमर एह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु की चरण सन लाग जगत सुख मान बिख झूठ सब साज है राम सुपरे जो सल बचन काहे कर करत मान वायु के बीज जैसे बुझदा को राज है नाग जन कहत बात बिर जाए तेरु बात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जगति मलनो महाराम भज रा भज जन सरात है कहो कहा बार बार समझ न क्यों बार बिन स्नान लह गए बार यो रे गा समगात है रहा सल परम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरे यह एक जात है बिख्या बिख जो पसार प्रभ को जस दी ही तार नाम जन कहे पुकार अवसर बिहात है जय जयमती मल नो महाराम रे मन कौन गत होया तेरी ये जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखिन सो आत लुपान मत नान फेरी रहो मानस को जन्म लीन सिमर नैन बकीन दारा सुख पयो दीन पगो बे परिवेरी नानक जन कहे पुकार सुपने जो जग पसार वसे बदना क्यों मरार माया जग चेरी जय जयमती मल नो मां बीत जाए जन्म काज ने निस दिन सुन के प्राण सम नहरे अजाल काल तो पहुंचे आन कहां जय हे बाजरे अस्त्र हो जो मान्यो देह सो तो तेरो हो अखे क्यों नार को नाम लेहे मूर्ख निराज रे राम भगत ही आन शाड दे तै मन को मान नानक जन एहो बखान जग में बराज रे एक ओंकार सतनाम करता प्रसन्न पौ निर्भर अकाल मूर्ता जूनी सहभंग प्रसाद सलोक सहस कृति मल्ला पहला पाठ प्रसन्न संध्या बादिंग सरपू जस बगल संवादंग मग झूठ प्रभुख अनुसारंग त्रैपा त्यौहार विचारंगल मोला तिलक लट दो धोती बसुआ कपट ओ जानस ब्रह्म कर्म सब फोटो में अच्छा कर्म को नान नचो ते आवे बिन सतगुरु बाट न पावे नेफल तस जन्म सो जावद ब्रह्म वित्ते सागर संसार सो गुरु प्रसादी तरे के कर कर समर्थ है कोहना विचार कर करते बस अजर कर रखी तार योग शब्द ज्ञान शब्द वे शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द शुभ शब्द शूद्र शब्द पराकृत है सर्व सबता एक शब्द जे को जानस पे नाम कर दास है सो निरंजन देव एक सिंह का सर्वदेवा देव देवता आत्म है आत्म श्री वासदेव जी को जान सुभेव नवदा दास है स्वामी निरंजन देव सलोक सहस्कृति वाला पंजाब एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग प्रसाद कचंत माता कचंत पिता कचंत बनता मनुष्यता कचंत प्राथमी तहत बंत को कचंत मोह कटम तह जत चबल मोहनी रूप बखानते त्यागरोत रहांत संग भगवान सिमर नानक लभ दऊ अचौत तन त्रगंत पात पिता स्नेह त्रग स्नेह प्रात बंद वह त्रग से मानता बिलासत त्रग स्नेह ग्रहरात कह सत्संग स्नेह सत्यंग सुखम बसंत नानक है मथ्यंत देह खलिण खलिण खणंत बलन अर्तंत जरु हत्यंत माया त्यंत आसा थत पवन गणंत सास पहान तरम अतंत मोको कुकूप दुर्लभ देह तत् आश्रम नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग चंद तू इंग लेपन कर रक्त चरमण नवंत द्वार पीत रहतिंग वायु रूप स्तंभ नै गोविंद नामक नै समनांत अज्ञानी जनंत असरंग लभ देव दुरंत

मातृक जन्म नहि पिपील का ग्रस्ते गोविंद से मृणंग तुंग तन्नी नान नानक अनक बार नमो नमः त्रिणगता मेहरंग सहकता हरियंग गुणिकता तरियंग ऊनता परियंग अंधकार कोट सुंग औजारंग ब्रह्मत नार खर गुर दियारंग ब्राह्मण है संग उदरंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरथ संसार गहंग ते नर नानक निफल है पर दर्व हिरणंग बहु का विघन करण चुरंग सर्व जी क्या है लौलित स्नात पत मन माए कर्म करत से शुक्र मते समेव चरण उदरंग पैद उतरै अनेक पातक हरंग नानक संग मना संसै महला पंजवा गाथा एक ओंकार संग प्रसाद कर्पूर पुप सुगंधा पर सिमरख देहि मलिण मजा रुद्र दुर्गंधा नानक आत गुर बेण ज्ञान परमाणु पर्यंत काश्य दीप लो से खंडन है गणेश न्याण पर नानक बिना साधु न सिद्ध थे जाणु सत हवंतो वरण दृष्टि मिथ्या कीत साधु लहन चलंथो पणंत नानक सासंगेण माया चित परमेण इस मथरेक बांधवै लभदंग साध संगेण नानक सुख असंग पाल भजन मैलागढ़ संगेण निम बिरख से चंद्र निकट बसंत बस नानक अहबुद नबोते गाथा गुप गोपाल कथंग मथंग मान मर्दन है आतंक पंच श्रेण नानक हर बाणी प्रहण बचन साध सुख पंथा लहंता बट करमण है रहांता जन्म रणीण रमणंग नानक हर कीर्तन है पतर परजेण चढ़ियंग न जड़ियंग पेंड पेड़ संपता ना बिहून निमुखता ना बहुत जोन वासुरु राणी पावनी साध संगेण लभदंग बट भगन हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर न व्यापन है गाता गुण अपारंग सामन जनंग बिरला जन है संसार काम तजंग नानक बिंद रमणंग साध संगमय समंतर साध बचना कोट दुख बिलासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक काल समूह धारण है सुंदर मंदिर सहण जैन मद हर कीर्तन है मुक्ति रमण गोबिंदे नानक लभदंग बट भागन है हर लभदो मित्र समितो बिधारण कदन चितो जाका अस्तन सोलो मितो सोई नानक सखा जी संकितो आप जंग अप जसंग मटंत सत पुत्र मृताब हृदय गौर मंत्रण प्रीतम भगवान चौथ नाम संसार सागर तारण मरण सिमन गोविंद।

सारग सागराया और गोंड गंभीरा अष्टपुत्र श्री राग की गोंड कौंबा मीर खास्तो मीग राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरट गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी उच्चै सुरसु हो पुन कीनी मीग राग सो पांच

कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रताना ईरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागाए हो आसमाऊ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन ईरा जित जड़ाऊ शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे हुकुम वरताए हुकुम वरताए आपे कह गुरमुख सह बुझाई तोड़े बंधन वह मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करी सो हुवै इक स्यों लिब लाई कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाई सिमर शास्त्र पुन पाप बीचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजाऊ तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलै अमृत वाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु आंदन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता की उदर मैं प्रतपाल करी सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वड़दाता जी अगर मैं आहार पहुँचावे ओ सुनो कहो पोहे ना सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जात सभाना ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रि

प्रभु का सिमरन मनसा दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ सुनानी प्रभु का सिमरन दरगाह मानी प्रभु का सिमरन हो सो भला प्रभु का सिमरन सुफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ता कला गुण पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरे मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए प्रभु का सिमरन सब कुछ सुजाए प्रभु का सिमरन नाई जाम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत मास समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दास सुन दसना प्रभु को सिमरन से तन मनते प्रभु को सिमरन से पत बनते प्रभु को सिमरन से जन प्रवान प्रभु को सिमरन से पुरख प्रदान प्रभु को सिमरन से बेमोहताजे प्रभु को सिमरन सर के राजे प्रभु को सिमरन से सुखवासी प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगार वाला प्रभु को सिमरन से परे उपकारी प्रभु को सिमरन तिन सत बलहारी प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे प्रभु को सिमरन तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरन तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरन तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरन बसे हार नेरे संत कृपा ते आनंद जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु का सिमरन कार्य पूरे प्रभु का सिमरन कमन चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बानी प्रभु का सिमरन सह समानी प्रभु का सिमरन ने चले आसन प्रभु का सिमरन कमल विकासन प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार सुप्रभ सिमरन काय अंत न पार सिमरा से जन जिनको प्रभु मया नानक तन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नी चौं कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हकारन करना हर सिमरन कियो सगले अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तेन पाया सलोक धीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्राप साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमी इतना पाई मानुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्यान दू जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वैत पारी हर को नाम किनमाय उदारी अनक पुना चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप तो सुखिया ला करोरी बंद न पराए हर का नाम जप निस्तरै अनक माया रंग देखना बजावे हर का नाम जपते गावे जे मार्गे जाते केला तै हर नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नहीं।

हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कै संग। जे मार्ग के घने जाय ना कोसा, हर का नाम संग तोसा। जे पैंडा मां अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पांतरा को ना सियानू, हर का नाम तनाल पिछानू। जय महा भयान तप्त बोकाम, तै हर के नाम की तू परछाम। जहां त्रिखा मन पुजिया करखा, तै नानक हर हर अमृत वरखा। भगत जना की बरतन नाम, संत जना का मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर उत्साह कुमात। हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कह बिरत विवेक। हर का नाम जन कौ मुक्त जोगत, हर का नाम जन कौ तृप्त भोगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की बड़े आई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत काश नाम वियोग। जान राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन को आप्रव दीना। हर हर जन कै उठ स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत बोध जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गा।

साजन की अचर्ज कथा अष्टपदी सात का संग उजल हो तो सात संग मलगली मगर सात संग मल सगली खो तो सात का संग मिटा अभिमान सात का संग प्रकट सुज्ञान सात का संग बुझा प्रभु नेरा सात संग सबूतन वेरा सात का संग पाए नाम रत्न सात का संग एक ऊपर जतन सात की महिमा वर्णा कौन पुरानी नानक सात की शोभा प्रमाय सुमानी साधक संग गोचर मिला है साधक संग सदा प्रफुला है साधक संग आवा बस पांचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सबकी रहन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कथू ताव है साध संग अस्तित्व मन पाव साधक संग माया ते पैन साध संग नानक परम सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग मां पुनीत साध संग किस्यो नी बैर साधक संग न भींगा पैर साधक संग नाई को मंदा साध संग जन परमानंदा साधक संग नाई हो ताप साधक संग तजै सा माप आपे जन साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबू ताव साधक संग सदा सुख पाव साध संग बात गोचर है साधु के संग अजारस है साधक संग बसा थान ऊंचा है साधु के संग मैल पहुंचा है साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाई नाम निदान नानक साधु का कुर्बान साधक संग सुकोले उदारा है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारा है साधु संग सोतन पाव है जिस तन ते सब को बरसाव है साध संग धर्म रह करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु का संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गाम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नई कछ काल दर्शन पेट तोर निहाल साधक संग कलूक धर साधक संग नरक पर हर साधक संग यौ सोहेला साध संग बिशर कर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रित बसा नानक उदरा साध सुन रस साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते विसरा साध संग सार पर निस्तर साधक संग लगा प्रम मीठा साधु का संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की मैं वेद न जाना है जेता सुनते तब ज्ञाना साध की उपमा त्यो गुणते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्लोक मन

निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान हूँ जैसे राज रंग को लागत तुल्पवान हूँ ब्रह्म ज्ञानी का तीर जी को जो बता को खोता को चंदन ले।

धारि उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई विमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन।

पारो महा ब्रह्म कनि का नाही तंदा ब्रह्म कनि लेता उत्पन्दा ब्रह्म कनि कहो सुफला ब्रह्म कनि सुफल फला ब्रह्म कनि संग सगल उदार नानक ब्रह्म कनि जपा सगल संसार।

गनी कमर परमानंद ब्रह्म गनी के कर सदा आनंद ब्रह्म गनी सुख साय निवास नानक ब्रह्म गनी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म गनी एक संघेता ब्रह्म गनी का वह चिंतु ब्रह्म गनी का निर्मल मंथो ब्रह्म ने ज्ञानी जिस करा प्रभे आप ब्रह्म गनी का बट प्रताप ब्रह्म गनी का दर्श बुट पागी पाई है ब्रह्म गनी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए ब्रह्म ज्ञानी का सकल मनमाए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमित कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जन ब्रह्म ज्ञानी का यंत्र पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सदजीवा नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब

वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होए पेन कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काहू बल की इच्छा नहीं बाचा है केवल भगत कीर्तन संग राचा है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आव दृढ़ावरा नाम जपावे नानको वैष्णव परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागा दुष्ट का संग मिनत मिलसा सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सह संग पापा मल खोवै भौतिक कीमत उत्तम होवै भगवंत की कैर करै नितनीत मंत्र निरपै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय वसावै नानक सप भौती भगवंत को पावै सो पंड जो मन प्रबोधै राम नाम आत्मा सोधै राम नाम सारस पीवै पंडित के उपदेश जाग जीवै हर की कथा हृदय वसावै पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण स्मृत बूजै मूल सुख मैं जाना अस्थूल जो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर्ण में जप को नाम जो जो जब तिसकी गत होए सत्संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारा पास प्रेत मुक्त पात्र को तारा सर्व रोग का युक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू युक्त कित ना पाइया धर्म नानक तिस मिला जिस लिखा तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास संत भय तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगाह प्रवान अपने दास को कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी युक्त नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्मता वह जीवन मुक्त सुख वह तैसा हरख तैसा सोग सदानंद नहीं वियोग

कबू सर्व की होतरवाल कबू होए बाबड़ राजा कहो पिखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभु रखे तिभी राय गुरप्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोह तारी लावा ध्यान कबू तरती स्नान कबू से सदक मुख ज्ञान कबू कीट हस्तंग होए जिया अंक ज्यों पर मैं प्रमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभु पावै त्वे नचावे जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबू सा संगत पावै उस स्थान ते बोर न आवै अंतर ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म का संग जो जल में जल है खटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु का सतगुरबान श्लोक सुखी बसा मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले अष्टपदी जिसके अंतर राजमान सो नरक पाती हो स्वान जो जन्म जो ब्रमंत सो हो तो बेष्टा का जंत आस गो करमंत कहावै जन्म बराबा जोन परमावै धन भूम का जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानक इहां मुक्त आगा सुख पावै धनवंता हो कर गुरबावै तिन समान का संग न जावै बोलश करमान खूपर करयास पर पीतरता का होय विनाश सबते आप जाना बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसी न बताया आप ओंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी गुरप्रसाद जा का मिटे अभिमान सोजन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अंकार नरक सुर्ग फेर फेर अवतार अनक जतन करे आत्म नींद्र वै हर दरगाह को कैसे गवाए आप को जो भला कहावे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाना मुझते काश होए तब इसको सुख नाही कोए जावे जाना मैं किस करता तब लो घर जोन में फिरता जब तारा को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत जब लग मोह मगर संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हों छूटा सहस कटेला कुटता वै तृप्तना वै माया पाछ पावे भोग बिख्या के ग्रह न तृप्ता वै खाप खाप मर बिना संतोख नहीं को राजा है सुप्रम मनोरथ बिरथे सब काजा है नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हार जाप करण करावण करण हार इसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सबते दूर सबू का संग बूझा देखा कर विवेक आप एक आप अनेक मर न बिरसाया वै न जाए नानक साध ही रह समाए आप देश समझे आप या पे रचा सबका साथ आपकी आपकी नो अपन विस्तार सबका सुखाओ करण हार उसते पिन कहो कुछ होए थान तनंत्र का सोए अपने चल तप करण हार कौत कर रंग अपार मन में आमन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किने मुखियानी सच सच सच सब कीना कोट पदे किने बिरला चीना।

सीता सलोकम संत शरण जो जन पर सोजन दृढ़हार संत की निंदा नानका बोर बोर अवतार इष्टपदी संत का दुख ने यार जाकट है संत का दुख जमते नहीं छुटा है संत का दुख ने सुख समझाए संत का दुख नरक में पाए संत का दुख मत होए मलीन संत का दुख सो बाते हीन संत के अते को रखना कोए संत का दुख धान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे कर नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन दे मुख पवा संतन का दुखन कागजों लवै संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिग जोन क्रमाए संतन का दुखन तृष्णा में जला है संत का दुखन सब को छला है संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच निचाए संत दुखी कथाओं को नाए नानक संत पावै तो ओए पी गत पाए संत का निंद माताई संत का निंद खिंटे कर ना पाई संत का निंद माते आरा संत का निंद परमेश्वर मारा संत का निंद राज ते हीन संत का निंद दुखिया दीन संत के निंद को सर्व रोग संत के निंद को सब जोग संत की निंदा दुख में दोख नानक संत पावै तो उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डाल लागै संत का दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा बकारी संत का दुखी जन्म अमरा संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावै तले मिलाए संत का दुखी अद बीत टूटा है संत का दुखी कित काज ना पहुंचा है संत के दुखी को उदयन परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत

मानो की टेक प्रीति सब जानो देव को एका भगवान जिसका दिया राय गाये मोर न तृष्णा लगाया है मारा रखा एक आप मानो का कृष्णा ही हाथ तिसका हुकुम बूझ सोख होए तिसका नाम रख कंठ प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लगा कोए उस मन में करन कार करमन मेरे सत व्यवहार निर्म रसना अमृत पियो सहसा कर ले जियो नैनो बेग ठाकुर करांग सत्संग मिलसा सबसंग चरण चलो मार गोबिंद मिटा पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगाह नानक उज्जल मथा भटपा गीते जन जगमाए सदा सदा हर के गुणवाए राम नाम जो करें विचार से धनवंत गणी संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पिछाना है तुत की सोची जाना नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिरे निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुझाए तिसकी जानो तृष्णा बुझाए सात संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल भुखे अंदर कीर्तन केवल भुखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जाम की भाषा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसका हर प्रमन चेतावे सो संसो इला ने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोद सोद सोद सीचिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न किस जन्म न किस मराए अपन चलते आप ही कराए अपन जामन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल मैं आप अनक चुप राज थाप थाप यमना सिंह किस खंड धारण तार ब्रह्मांड लख भे पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तन मंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द पै नहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बाढ़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो कुछ करा सु प्रभु का रंग सदा सदा बसार संग समय हो वासो होए करण हर पिछाना सोए प्रभु का गिया जन्म इठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उचित समय समाये ओ सोख नदान उन्हूं बने आए आप सुको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान सलोक सर्व कला परपूर प्राप बिरथा जानन हार जाका सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी।

तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभु की जो सगल कट सो है। तनमंता होए क्या को गर्भै, जा सब किछ तिसका दिया दरबै। आत सूरा जे को कहावै, प्रभु की कला बिना कहतावै। जे को होए बह दातार, ते देन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदिर को था मैं तमन, त्यो गुर का शब्द मनाय स्तमन। जो पखान नाव चरत्र, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीप प्रकाश, गुर दर्शन देख मन होए विकास। जो माव ध्यान में मार्ग पावै, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मुरु काए बिल लाइय, पुरब लिखे का लिखया पाइय। दुख सुख प्रभु दे मनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कुछ करा सोई सुखमान, भूला काए फिरे जान। कौन बसताई तेरा संग, लट रो रस लोपी पतंग। राम नाम जब हिरदे माए, नानक पात से ती कर जाए। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज मान ले मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल। लाद के संता संग चाल, अवर त्याग बिख्या जिंदाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगाह।

कहे हर गुण गाए अमृत रस चाखा, उठ गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया। मृत को जीवा लनहार, भूखे को देवते आधार, सर्वदान जाकी दृष्टि माए, प्रभु लिख का लेना पाए। सब कह तिसका उकरना जोर, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जब जन सद सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाका मन गुर की प्रतीत, ते जने आवे हर प्रचीत, भगत भगत सुनिए तो लोए, जाका हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुखैत, सची दृढ़ सचा कार, सच परता सचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग केश, त्रिगुण ते प्रापे न तिसे बजाए नानक, जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी। अपना शी ब्रह्म मन में राख, मन की तू प्रीत त्याग, तिसे प्राणाई किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बन बिना आपे दाना, गैर कबीर कहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा नदान दयाल बख्शंद। सातरे की चरणी पाओ, नानक मन ए अनराओ। मनसा पूर्ण शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण पर जाका नेत्र भोर, तुसका मंत्र न जाने होर। अंधरूप मंगल सद जाका है, सर्वतो सुनिया करता कह, राज में राजोग में जोगी, तपै तुबीसर गृहस्थ में भोगी। चाहे तह भगत सुख पाया, नानक तिस पुरखा करे अंत न पाया। जाकी लीला की मितनाए, सगल देव हारे वगाहे, पिता का जन्म के जाना पूत, सगल प्रोई अपना सूत। समात ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ते आमन से, त्यो गुण में जाको प्रमाए, जन्म मरा फिर आवा जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान।

अपनी कीमतें आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हार नाऊं। नाम के तारे सगले जंतु, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे स्मृत वेद प्राण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे प्रियं सब पवन, नाम का संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपना नाम लाए, नानक चौथे पद्म सो जन गात पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, कृतु सत सजा की बाणी, सत पुरख समय समानी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पात, सतकर्णी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिसा साव भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई।

ज्ञान है प्रिमित गात जिसी श्रेष्ठ सुकर्ण हार अवर नूझ करत विचार करते की मेत न जाना किया नानक ज्योतिष पावा सो वर्तिया विष्णु विष भय विस्माद।

जनका सेवक सोवट भागी, जनका संग एक लेव लागी। गुण गोविंद कीर्त जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आदि सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार। आप सत सत सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत सुनता। गुजनहार को संसम होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत रूप हृदय जन मान्या, करण क्राम तृणमूल पछान्या, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान ते समान प्रगटाया। पहते निरपोए बसाना, जिसते उपजै तस्माए समाना, बस माए ले बस गुड़ाई, ताको भिन्न न करा जाई। बूझै बूझण हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाना संग, प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवको प्रपालन हारा, सेवक की राखा निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु तारा, नानक सो सेवक सा सा समारा। अपने जन का पर्दा टाका, अपने सेवक की सर पर राखा, अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपद राखा, ताकि गत मित कोई न लाख, प्रभु के सेवक को ना पहुंचा, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। निकी कीरी में काल राखा है, पश्म करा लश्कर कोट लाखा है, जिसका सास न काटते आप, ताको राख देकर हाथ। मानस जतन करत बोपात, तिस्ते करत बिरथे जाप, मारे न राखा है वरन कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख बढ़ाणी। बारम बार बार प्रभ जपिया, पी अमृते मन तंत्र पिया, नाम रतंजन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाई दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग, नाम राज जंत्र ताने, मंत्र नाम है नाम सुमाने।

प्रभु ने सुर समाये जो हो आहू तो जान है प्रभु ने का कुंभ जान है तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण का एक न जानो हाड़ पैर पो बसे हजूरे कौ नानक सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व थो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका

काल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इशपुनी श्रद्धा सा पूरी रव रिया सत्संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जगन मैं राखै गुर प्रसाद को बिरला ला।

व्यापतम। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कांक शोत परमो अपन खेला वरतीजा नानक करने हारना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किसको गनी। जब एक क्या रकम पारो तब नरक सुर कौ कौन अवतारो। जब निर्गुण प्रभ सह सो पाए तब शिव शक्त कौ कि ठाए। जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कौन निडर कौन कत डरै। अपन चलदा आप करने हार नानक ठाकुर अगमे अपार। अविनाशी सुखे अपने आसनो तंजन मरन को कहा विनाशनो। जब पूर्ण करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कहो कुछ होई। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आपिय चर्जा नानक अपन रूप आपियो पर जा। जन निर्मल पुरख पुरख पत होता तब बिन मह तह बिन मैल कहो क्या तोता। जन रंजन रंका निर्बाण थे कौन को मान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह शल शदर लगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग सुमावै तह किसे भू कौन तृप्तावै। कन क्रामण करने हारो नानक करते कना सुमार। जब अपनी सोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जा सर्ब कलाया पेपर बीन ता बेद गदेव कहा को ऊचीन। जा अब अपने आप आप उतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है। जा अपन ऊच अपन आप नेरा ते कौन ठाकर कुण कही है चेरा। बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय शल शेद पेद समाया हुआ किसे व्यापत माया। आप सको आपे आदेश ते गुण का ना ही प्रवेश। हो जाए क्या एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप आप तारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आप सको आपे पाहूचा। जय प्रचो प्रपंच कार ते गुण में कीनो विस्तार। पापुन ते पही कहावत को नरक को सुर्ग बशावत। हाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पै भार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की बखियान। अपन के लाभ कर देखा खेल संकोचा तब नानक कह। जय भगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप। दहु पाका पे तनी उनकी शोभा उनहूं बनी। आपे कौत करे अनजोज आपे रस भोग निरजोग। जिस भावत सपन नाय लाए लावै जिस भावत खेल खिलावै।

अष्टपदी संत संगंत प्रभ डिठा नाम प्रभु कला गा मीठा सकल सिमगरी एक घट माहे अनक रंग नाना दिष्टा है नौ निदमृत प्रभ का नाम हो देही मैं इसका विश्राम सुन समाद न तय नाद कह न जाइए चर्च विस्माद तिन देखे जो साहब दिखाए नानक जन सो जी पाए सुअंतर सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तरनमय आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आगे तय सह कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुण दैत सह समाज तस्ते भिन्न नाही कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मैं देख ससी सूर निखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोल है आप डोल न कब हूं डोल है सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाई है गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धार्यो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं विसास समझना का पेखण सब ब्रह्मो समझना कह दे सब धर्मो समझना सुनो सब बचन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तस्किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुखमान कनक रावण हर प्रभ जान अंतर बसै बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे तक करे विस्तार तिस भावे तक एक अंकार अनकल लखी न जाए जिस भावे तसलै मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साहब जनाए नानक तिस जना बुझाए सरपूता वरतारा सरब नैना पेकन आरा सब समगरी जा कथना अपन जा सा पी सुना

जन नानक नाम आधार टेक है। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए तिनके सब दुख

अनहद शब्द दसम द्वार वज्जयो तह अमृत नाम चुआया था तोड़ नहीं मन तृष्णा बूझी अखोट पंडार समाया था चरण चरण चरण गुर सेवे